0: It's 7:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्पन बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।
0: गली मोहल्लों में सफाई का खास ख्याल रखें, कहीं पर पानी खड़ा ना होने दें। डेंगू जानलेवा मर्ज है, इलाज से बेहतर एहतियात है। This public service message is brought to you by FM 100.
2: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदाने जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं, और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो रास निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.

0: FM 100's time check. It's 8 a.m.
1: महिराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है। शॉबे सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉबे जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम।
0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
2: तूफान है हर जीत की पहचान है
0: एंड
3: फिनिक्स लगा और भूल जा फिनिक्स लगा और भूल जा
0: And
4: Sweepy Clean करे तेजी से सख्त दाग और जरासीम का खात्मा और रखे टॉयलेट को चमकता हुआ साफ
0: And
5: Lifebuoy एंटी डैंड्रफ शैम्पू विद योगर्ट एंड एग 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
6: बैन अलावामी सफर पर रवाना होने वाले मुतवज्जो हों, ऐसी ऑनलाइन एप्स और प्लेटफॉर्म से इज्तनाब करें जो पैसों की इवज किसी नामालूम शख्स का सामान आपके अपने सामान के साथ ले जाने के लिए तरजीह देते हैं। यह आसान कमाई का तरीका तो नजर आता है, लेकिन हकीकत में एक खतरनाक जाल है। मंशियात फरोश इन्हीं तरीकों को इस्तेमाल करके मंशियात स्मगल कर रहे हैं। याद रखें, अगर आपके सामान से मंशियात बरामद हुई तो कानूनन इस जुर्म के जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। खबरदार, किसी अजनबी का सामान दौरान सफर अपने साथ ले जाना आपके लिए खतरनाक हो सकता है।
7: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
8: قدرت کا نظام توازن پر قائم ہے۔
9: وسائل سے زیادہ آبادی کے بوجھ سے توازن بگڑ جاتا ہے۔
10: گھر کے افراد اور آمدن میں توازن
11: ہماری ذمہ داری ہے۔
12: خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں۔
7: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
0: Like us on facebook.com/FM247365 FM 247365 FM 100 31 saal FM 100

0: 15 AM. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? श्वाबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन नज़ा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।
0: This program is

0: And sweepy clean. Kare tezi se sak daag aur jarasim ka khatma. Aur rakhe toilet ko chamakta hua saaf. And
1: Lifebuoy Anti-Dandruff Shampoo with yogurt and egg. 100% aage badho bina ruke.
2: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशतगर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखा दही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं, तो बराहे करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
3: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। बच्चों का ऑनलाइन तहफ्फुज़ आपकी जिम्मेदारी है। अपने बच्चों को ऑनलाइन राब्तों का महफूज तरीका इस्तेमाल सिखाएं। इंटरनेट के जरिए खेलों, तफरी और तालीमी सरगर्मियों में शामिल होने के फवायद जरूर हैं, लेकिन इसमें नामुनासिब मवाद, साइबर बुलिंग और दीगर ऑनलाइन नुकसान जैसे मुमकिन खतरात भी मौजूद हैं। वालिदैन और असातिज़ा की जानिब से बच्चों की निगरानी और रहनुमाई न होने की सूरत में बच्चे बासानी मनफी सरगर्मियों का शिकार हो सकते हैं। वालिदैन को अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों के हवाले से आगाह और होशियार रहने की जरूरत है। बच्चों को नुकसानदेह मवाद जैसे नफरत अंगेज तकरीर, गुस्ताखाना और फहाश मवाद वगैरह अपलोड और शेयर करने के कानूनी नतायज के हवाले से भी शऊर और आगाही इंतहाई अहमियत की हामिल है। पीटीए की वेबसाइट पर पेरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर की एक फहरिस्त दस्तियाब है, ताकि वालदैन अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों की निगरानी करते हुए उन्हें ऑनलाइन नुकसान से महफूज रखें। www.pta.gov.pk। मुफाद आमा के लिए ये पैगाम FM 100 और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
4: पाकिस्तान हमसे है, हम अच्छे तो पाकिस्तान अच्छा। तो आओ अहद करें कि जैसा पाकिस्तान हम देखना चाहते हैं वैसे खुद बनकर दिखाएंगे, क्योंकि हम बदलेंगे तो बदलेगा पाकिस्तान। अजमी इस्तेहकाम, मुस्तहकम पाकिस्तान।
3: मुफाद आमा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
5: ख्वाब तो सब देखते हैं बेहतर रोजगार का, मगर इस ख्वाब की ताबीर के गैर कानूनी जराए खतरनाक रस्तों पे ले जा सकते हैं, जहां मौत मुंह खोले आपकी मुंतजर है।
6: कामयाब नाक उसे तीन बार मौत देखे।
7: टाइम सी मनु ऐसे ही के मैं हूँ, कब्र से चला गया, मैं नहीं बचा।
8: फिर उन्होंने साड़ी वीडियो बनाया, सानू मारिया, सानू कुटिया।
5: अपने ख्वाबों की तकमील के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार करें।
9: एम्बेसी के थ्रू प्रॉपर वे में सबमिट करवाया और बहुत ही जल्दी मेरा वीजा लग गया था, वर्क वीजा।
5: इंसानी स्मगलिंग में मुलविस

0: भूखे सदे भाप के लिए वजीर आजम पाकिस्तान की सरबराही में खसूसी टास्क फोर्स का क्याम, मुलगीर क्रैकडाउन जारी, एजेंट्स और सरकारी अहलकारान के खिलाफ मुकदमात का इंदराज, गिरफ्तारियां, जायदादों की जब्तगी और बैंक अकाउंट्स मुंजमित किए जा रहे हैं। अंदरूनों बैरून मुल्क बेहतर रोजगार के लिए प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम और नेफटेक के जदीद तरीन और मुफ्त कोर्सेज में अभी दाखिला लें। मकामात मुकद्दसा की ज़ियारत को जाने वाले ज़ायरीन भी कानूनी ज़रिया इख्तियार करें। इंसानी स्मगलरों के चुंगल से बचें, ख्वाब जरूर देखें, बेहतर रास्ता चुनें। हुकूमत पाकिस्तान।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
2: FM 100 Like us on facebook.com/FM247365
3: FM247365।
4: किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम होती है उसकी सेहत।
5: किसी भी शख्स को देख के उसकी सेहत के बारे में अंदाजे ना लगाएं।
4: मुझे पता है कि मेरा वजन ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं वॉक नहीं करता।
6: जी हाँ, मुझे भी लोग मोटी कहते हैं, मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ।
5: हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं। सामने वाले पर क्या गुजरी हमें इससे क्या।
4: मैं ओबेसिटी का शिकार हूँ, सिर्फ वॉक से ये कम नहीं।
6: मोटापा एक बीमारी है, सिर्फ मीठा ना खाने से खत्म नहीं होगी।
5: सिर्फ बातें बनाने से हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते।
6: अभी इसी वक्त अपना BMI चेक करवाइए,
4: यानी अपने वेट को अपनी हाइट की मुनासिबत से जांचिए
5: और इस वजन की असल हकीकत को समझे।
4: आइए वेट से आगे का सोचें।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।

0: A bigger variety of broader music mix on the biggest hit.
1: Biggest hit.
0: Only on your favorite radio. FM 100. FM 100. 100.
2: FM 100's time check. It's 9 a.m.
3: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।
2: दिस प्रोग्राम इज

0: तुम स्कूल में इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
2: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैल रहेगी आगे बस।
2: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
3: दिस प्रोग्राम

0: It's 10:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।
2: किसने कहा था पैसे

0: Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.
1: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदाने जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं, और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरूने मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
2: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2025 के मुताबिक दुनिया भर में 31 करोड़ 60 लाख से ज्यादा अफराद मंशियात इस्तेमाल करते हैं, जबकि तकरीबन 6 करोड़ 40 लाख अफराद मंशियात के बायस सेहत और जिंदगी के संगीन मिसाइल का सामना कर रहे हैं। ये आदाद व शुमार मंशियात के बढ़ते और इंतहाई तेजी से बदलते रुझान के पेश नजर पैदा होने वाले पेचीदा मिसाइल से आगाह करते हैं। पाकिस्तान भी इस आलमी चैलेंज से महफूज नहीं। 2013 के कौमी सर्वे बराए मंशियात के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 67 लाख अफराद मंशियात के इस्तेमाल का शिकार है। पाकिस्तान की तकरीबन 68% आबादी 30 साल से कम उम्र, जबकि 27% 15 साल से कम उम्र है। यही नौजवान आज एक फैसला कुन मकाम पर खड़े हैं, जहां वो मंशियात के खतरात का सामना भी कर रहे हैं और एक रोशन मुस्तकबिल, रोशन महफूज और तरक्याती याफ्ता पाकिस्तान की उम्मीद भी है। यह सिर्फ आदाद नहीं बल्कि जिंदगियां, खानदान और मुस्तकबिल हैं, जिन्हें महफूज रखना हम सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। इस जंग में सबसे मुअसर हथियार आगाही है। वालदैन, असातिज़ा, मीडिया, तबकात और नौजवान, हम सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है कि आने वाली नस्लों को मंशियात के खतरात से महफूज रखें। आज इंसदादे मंशियात के आलमी दिन के मौके पर आएं, हम सब मिलकर अहद करें कि हम आगाही को अमल में बदलेंगे, उम्मीद को ताकत बनाएंगे और मिलकर एक मंशियात से पाक पाकिस्तान की तामीर करेंगे। आपका एक फैसला जिंदगी बना सकता है और एक नशा सब कुछ मिटा सकता है। फ्यूचर की रेस में नशा शॉर्टकट नहीं, डेड एंड है। 26 जून सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि याद दहानी है कि जिंदगियां कैसे बचाई जा सकती हैं। एक कौम, एक मंजिल, मंशियात से पाक पाकिस्तान।
2: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
4: इट्स 24 आवर्स नॉन स्टॉप वाइब्रेशन connecting you,
5: connecting,
4: holding you,
5: holding
4: with FM 100.
6: FM 100. FM 100.

0: इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
2: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ है 100% पीछे।
1: सिर्फ मैल रहेगी आगे बस।
2: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
3: Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.

0: This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga
1: aur bhul ja. तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखा दही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं, तो बराहे करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
2: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सरदर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें। गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें। लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
2: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
4: क्या आप जानते हैं कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स की जानिब से मुख्तलिफ वैल्यू एडेड सर्विसेज फराहम की जाती हैं? इन सर्विसेज में रिंगटोन्स, ब्रेकिंग न्यूज अलर्ट्स, मिस्ड कॉल अलर्ट, इंटरनेट बंडल्स, गेम्स और दीगर मालूमाती सहूलियात शामिल हो सकती हैं। ताहम बाज़ औकात ये मुशाहिदा सामने आया है कि सारिफ की इजाजत के बगैर कोई वैल्यू एडेड सर्विस फाल हो जाती है या बैलेंस से रकम कट जाती है, जबकि सारिफ को इसका इल्म भी नहीं होता। याद रखें कि वैल्यू एडेड सर्विस की फालियत के लिए सारिफ की तस्दीक जरूरी होती है, जिसके लिए अमूमन ओटीपी की तस्दीक या मखसूस यूएसएसडी को डायल करना लाजिम होता है। याद रखें, पीटीए टेलीकॉम ऑपरेटर्स को वैल्यू एडेड सर्विस खुदकार तौर पर एक्टिवेट करने की इजाजत नहीं देता। अगर आपने ना तो ओटीपी शेयर किया है और ना ही कोई कोड डायल किया है तो ऐसी सर्विस फाल नहीं होनी चाहिए। अगर आपके साथ भी ऐसी सूरत हाल पेश आए तो परेशान होने की जरूरत नहीं। सबसे पहले अपने मुतल्लिका टेलीकॉम ऑपरेटर से राब्ता करें और बाकायदा शिकायत दर्ज करवाएं। ऑपरेटर आपको एक शिकायत नंबर फराहम करेगा। अगर मुकर्रर वक्त के अंदर आपका मसला हल ना हो तो आप पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी के ऑनलाइन पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। शिकायत के अंदराज का तरीकाकार ये है कि सबसे पहले वेबसाइट complaint.pta.gov.pk पर जाएं। शिकायत के अंदराज के लिए सारिफ को अपने नाम और शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के जरिए एक यूजर प्रोफाइल बनाना होगा। इसके बाद साइन अप के ऑप्शन पर क्लिक करें और मतलूबा मालूमात फराहम करें, जिनमें नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, राबता नंबर, शहर का नाम और पासवर्ड शामिल होंगे। इसके बाद जनरेट ओटीपी पर क्लिक करें और मौसूल होने वाला वन टाइम पासवर्ड दर्ज करें। अकाउंट बनने के बाद साइन इन करें और अपना CNIC और पासवर्ड दर्ज करके लॉग इन हो जाएं। याद रखें कि आपका कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर ही आपका यूजर नेम होगा। लॉग इन होने के बाद बाएं जानिब मौजूद रजिस्टर न्यू कंप्लेंट के ऑप्शन पर क्लिक करें। अब शिकायत की तफसीलात दर्ज करें और शिकायत की नौयत मुंतखब करें। इसके बाद शहर, सर्विस, फराहम कुनंदा की किस्म और दीगर मतलूबा मालूमात फराहम करें। अगर आपकी शिकायत किसी मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर से मुतालिक है तो इस बात को यकीनी बनाएं कि आपके पास वो शिकायत नंबर मौजूद हो जो आपको ऑपरेटर के पास शिकायत दर्ज कराते वक्त फराहम किया गया था, क्योंकि पीटीए के पास शिकायत के इंदराज के लिए ये नंबर देना जरूरी होता है। अब कंप्लेंट नंबर दर्ज करें और कंप्लेंट समरी में अपनी शिकायत की तफसील लिखें। जरूरत के तहत मुतल्लिका फाइल भी मुंसलिक की जा सकती है। इसके बाद कवायद और जवाबित कबूल करते हुए अपनी शिकायत बाकायदा तौर पर सबमिट कर दें। शिकायत सबमिट होने के बाद आपको एक रेफरेंस नंबर मौसूल होगा, जिसके जरिए आप अपनी शिकायत का स्टेटस भी मालूम कर सकते हैं। मजीद मालूमात के लिए पीटीए के टोल फ्री नंबर 0800-55055 पर राब्ता करें। डिजिटल दुनिया में महफूज कदम, पीटीए।
5: ये मुफादे आमा का पैगाम।

0: It's 11:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? श्वाबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन नज़ा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
2: कहीं अनजाने में आप दहशतगर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे? होशियार रहें, मुहतात रहें. अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें. हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है. याद रखें, दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी दहशतगर्दी है. हुकूमत पाकिस्तान.
0: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया.
3: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
0: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैं रहेगी आगे बस।
0: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
2: Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: FM 100's time check. It's 12 noon.
1: टैक्स पे करना अब हुआ आसान। अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर। आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैज कैश है ना।
0: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/fm247365 FM 365 FM 100 31 साल FM 100 आपकी आवाज। अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान।
2: अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान। पाकिस्तान।

0: टैक्स पे करना अब हुआ आसान। अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर। आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैज कैश है ना।
1: नशा न परेशानियाँ खत्म करता है, इसका जरूर हमेशा रहता है। ये एक लम्हे की कमजोरी है जो सारी जिंदगी का रोग बन जाती है। बातला इल्मी जहालत और हमाकत से शुरू होती है और सारे खानदान को तबाह कर देती है। ऐसी कोई खाने पीने लगाने या सरूर दिलवाने वाली अशिया का इस्तेमाल न करें जिसमें नशा हो। वालिदैन, असातिज़ा और दोस्त बच्चों पर नजर रखें। हंसी मजाक में की गई हरकत आपकी सांसें भी खत्म कर सकती है। नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार। मनशियात की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए हमारी हेल्पलाइन पर राबता करें।
2: मुफादे आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
3: Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.

0: It's 1:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशिश।

Welcome back. It's another one of the block. How are you, Mahi Kitchi? Beautiful track है और मलका इतरन नूर जहां का originally गाया हुआ ये track remake आपने सुना और उम्मीद करता हूं कि तुहानु पसंद आया होएगा. आगे बढ़ते हैं जनाब आपके messages की जानेब. जी कहां गया message? हां ये रहा. अच्छा भाई अय्यूब लाला का मैसेज था हमने जो लास्ट बड़ा था 64 आम के हवाले से और कह रहे हैं कि नौरीन सिस्टर को सलाम सलामती की ढेर सारी उन्होंने दुआएं दी हैं और मानूर बाबू आज सारे कजन्स मिलकर सुन रहे हैं मानूर गरीब बारियम मुनीबा बिस्मा अरूबा और जुनेरा बाबू हम सब के लिए एक पख्तों के ना हो जाए तो क्या बात है जबरदस्त जनाब बिल्कुल हो जाएगा ये कोई कहने की बात है और हमारे आ गए शहजादे सलीम मेहमान सलीम मेहमान चौसा हम आ गया मेरे लिए कहूंगा मैं और कह रहे सलाम नदीम आप कैसे हैं और लाला अगर आए तो उनसे कहना मैं आपके पास नहीं आ रहा मैंने मजाक में आपसे कहा था मैं आज बल्दिया जा रहा जरूर जाऊंगा और ससुराल मुफ्ता तोड़ कर आऊंगा यार समी ने काफी अरसे से मुफ्ता नहीं तोड़ा समी क्या हो गया पाबंदी लग गई क्या वरना बता रहा था दूसरे दिन समी साहब वहां पहुंचे हुए हैं कभी कोफ्ते खा रहे कभी बिरयानी अच्छा भाई लाला कह रहे हैं कि माहीन शेरबानो निगत को सूफिया कैफ का गाना यार अगर हो जाए तो क्या बात है अब आप कह रहे हैं तो बिल्कुल हो जाएगा अच्छा फिलहाल जो है भाई हम आपको नहीं मैसेज हो जाए नौरीन बहना कहती हैं कि संजू बहना मोश अच्छा ये तो हो गया रात को फैसलाबाद में खूब बारिश हुई ओ फल्ला जी बहुत एंजॉय किया और कराची में भी रहमत की बारिश की दुआ भी की बड़ी अच्छी बात है मैंने सुबह ब्लैक कॉफी लीमू वाली पी और अभी नाश्ता किया चिकन चीज पराठा जो कि नाश्ता नहीं ब्रंच है चाय के साथ भाई सही जा रही हैं आप तो भाई फुल वीआईपी माहौल चल रहा है और हमारी उन्हें नूडल्स बहुत पसंद है नदीम भाई अच्छा वैसे एक बात बताऊं समी अगर तुम्हारी उनको पसंद है ना तो उनको बोलो थोड़ा सा हल्का हाथ रखे और मैं हकीकत बता रहा हूं आपको इसके मैं नुकसान आपको बताऊं फौरन तो नहीं पता चलता ना लेकिन हमारे पाकिस्तान की आवाम का ये एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं उसको आदत बन चुकी है कि जब तक सर पर बम फट ना जाए ना जब तक कोई नुकसान हो ना जाए तब तक एहतियात नहीं करनी तो हमारी उन्हें नूडल्स बहुत पसंद अच्छा इंशाल्लाह आज जाऊंगा ससुराल बाकी शादी में कोई बुला ही नहीं रहा अब तुम अपनी शादी तो करो उसमें तो बुलाओ पहले बगड़े शंगड़े डालेंगे भाई हम यानी कि समझ रहे हो ना आप हाँ भाई फरीन शहजादी भी आ गई है कहिए अस्सलाम वालेकुम हाँ क्या हाल चाल है आपके सोनियों में आ गई जीती रहो मेरी प्यारी सी बहना कैसन हो तुम ओके ठीक हो अबे भाई फौरन से पेशतर जो है ना आपको गाने की जानिब ले जा रहा हूं मैं और कहां गया गाना लो गाना भी यार हमने जो गाना चलाना था वो गाना तो ये रहा अच्छा भाई अभी जिस ट्रैक की जानिब हम जा रहे हैं ये ट्रैक स्पेशली हम डेडिकेट कर रहे हैं हमारी प्यारी सी बहना मानूर को उनकी बहुत सारी कजन्स आई हुई हैं और उन कजन्स के साथ जिनका नाम भी हम लेंगे और गाना डेडिकेट करेंगे मिलकर जो सुन रही हैं मरियम है मुनीबा है बिस्मा है अरूबा है जुनेरा है तो आप सबके लिए मानूर की जानिब से गाना एल्लो फड़ो

वेलकम बैक आएंगे सुने आप सबको जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है उनको बताते जनाब मेरा नाम है नदीम अख्तर और प्यार से आप लोग मुझे कहते हो एन ए सुने हैप्पी आर्स में मैं हूं आपके साथ आपका और मेरा साथ है जनाब तीन बजे तक और तीन बजे तक ये हल्ला गुल्ला जारी हो सारी है। इसमें शामिल होने का बहुत ही आसान सा तरीका है अपने मोबाइल के राइट मैसेज में जाइए कि चाहे लिखिए स्पेस दीजिए अपना प्यारा सा नाम प्यारा सा मैसेज और उसको सेंड कर दीजिए 3636 पर। मैसेजेस आ भी रहे हैं आपके 3636 पर और अयूब लाला आपका गाना जरूर चलेगा डोंट वरी वो अलग चलेगा। अभी तो हमने मानूर को और उनकी तमाम दोस्तों को ट्रैक डेडिकेट किया था और अयूब लाला ने बोला वाह वाह यार गुड सॉन्ग है जबरदस्त है। और नदीम अख्तर भाई आपको और सभी सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है भाई। और एक हसन जहांगीर का गाना अगर हो जाए तो क्या बात है ये हमारे सलीम मेमन बिरयानी वाले हाँ हाँ खारादर से भाई खारादर में होते हैं ये

0: सलीम मेमन दूसरे फालूदे वाले, ये बिरयानी वाले जो है सलीम भाई, ये खारादर में होते हैं, इतना तो पता चल गया। अब तुम पहुंच जाओ खारादर। अच्छा भाई, आपको हसन जहांगीर का गाना हम जरूर सुनाएंगे, 100% सुनाएंगे, डोंट वरी। और बाबू जमुंग द टोल द तरफ ना, थैंक यू बाबू, आप पख्तों में और भी अच्छे लगते हैं, वेरी गुड, वेरी क्यूट। अच्छा भाई, सबकी तरफ से उन्होंने मुझे शुक्रिया अदा किया है। अरे नहीं मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों, मेरी बहनों, ऐसी कोई बात नहीं है। बैरिया टाउन के सिक्योरिटी गार्ड हैं एक, जिनका नाम है नसीरुद्दीन गोंदर, वो भी मुझे सुन रहे हैं। भाई कैसे हो, खैरियत से हो नसीरुद्दीन साहब? और हमारे एक बड़े मशहूर भी मुसलमान एक्टर हैं, गो के होते वो उधर हैं, नसीरुद्दीन शाह, तो ये नसीरुद्दीन गोंदर है। नसीरुद्दीन साहब क्या कहना चाहेंगे आप, क्या खाया यार वैसे आज? सही बताओ, चाय पराठा, चाय केक, क्या खाया आपने? अच्छा भाई, एक और आपसे बात पूछनी थी, और वो ये पूछनी थी कि ये आजकल जो है ना बड़ा वो चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है, लोग जो है वो शॉर्ट वर्ड्स यूज करते हैं। किसी से उम्र पूछो ना कि तुम्हारी एज क्या है, आई एम जेन ज़ी। अब जब ये कोई बच्चा बोलेगा तो हम जैसे जो लोग कहेंगे भाई क्या है ये, कौन सी उम्र है भाई ये, जेन ज़ी क्या है? इसके हवाले से अगर आपको कुछ पता है तो बताएं। मतलब मैं वैसे पूछ रहा हूं आपसे, अगर आप बता देंगे तो अच्छी बात है, वरना मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा, इन्फॉर्मेशन दूंगा कि ये होता क्या है। मतलब बच्चों से उम्र पूछो ना तो होता ना जी,
1: मैं 2025 में पैदा हुई थी, 26 में पैदा हुई थी, 20 में पैदा हुई थी,
0: इस तरह का सीन होता है ना। तो कुछ मतलब टीनएजर्स वगैरह से या यंगस्टर्स से पूछे आप, तो यार तुम्हारी उम्र क्या है? जेन ज़ी हूं मैं। अब ये क्या है, क्या आपको पता है इसके हवाले से? नहीं पता तो हम आपको बताएंगे, बड़ी मजेदार किस्म की इन्फॉर्मेशन है ये, और खसूसी तौर पर मिडिल एजर्स को या पुरानी जनरेशन के लोग, जैसे यानी कि समझ रहे ना, उनको पता होना चाहिए ये, ताकि कोई बच्चा बोले तो समझ में आ जाएगा बच्चे की उम्र क्या है। इस तरह तो होता है, इस तरह के कामों में क्यों उदास भरते हो सर्दियों की श्यामों में। और मैसेज, यस मैसेज की जानिब। मुश्क कहती हैं भाई, आज मुश्क फुल टाइम जो है हमारे साथ हैं, ये बड़ी अच्छी बात हो गई, ये बहुत अच्छी बात हो गई। उनके मैसेज जो है कहती है कि जितनी गर्मी पड़ रही है मेरा सबर का फल खराब ना हो जाए। वैसे कई लोगों के खराब हो चुके हैं। तकलीफ जब होती है, जब हमारा व्हाट्सएप भरपूर तवज्जो मांगता है, और वो तवज्जो उसी वक्त होती है जब उसकी चार्जिंग नहीं होती। ज्यादा सीरियस ना रहा करें, आप दुनिया में आते हैं आईसीयू में नहीं। बात तो अच्छी है, खैर बहुत गर्मी है, अपना ख्याल रखें, मुस्कुराएं, शुक्रिया। वैसे ये बात क्या बात है भाई। मैं नूडल्स पसंद नहीं करती हूँ, अरे मुश्क नहीं पसंद करती, अच्छी बात है। तो वैसे ये बात कितनी यार मजाहतन, ये यंगस्टर बड़ी अच्छी बातें कर जाते हैं, खुसूसी तौर पर मुश्क, कि हम इस दुनिया में आए आईसीयू में थोड़ी आए। आईसीयू में क्या होता है, जब इंसान भरपूर तरीके से, जिसको सांस की जरूरत हो, 10 डॉक्टरों की जरूरत हो, इस तरह की सांसें ले रहा हो, तवज्जो, तमाम चीजें सारी चल रही, भाई आईसीयू में थोड़ी आए, दवाइयां खा रहे हैं भाई। इस दुनिया में आए, अल्लाह ताला ने इतनी नेमतें, मतलब आईसीयू में क्या होता है कि आईसीयू में जो है वो कमरा, एसी, दवाइयां, डॉक्टर, नर्सें, लेकिन आप इस दुनिया में जो आए हैं, अल्लाह ने आपको जो इस दुनिया में भेजा है, आए आए आपके लिए क्या, आपके लिए फल है, फ्रूट्स, डिफरेंट टाइप के, हर एक का अपना अपना जायका, गंदुम जिससे आप पता नहीं क्या क्या बना लेते हैं,

0: वेलकम बैक कहेंगे सुनियो एम्पलीफायर ट्रैक आपने सुना, मैसेजेस आपके आ रहे हैं कि एचआई स्पेस, आपका नाम, आपका मैसेज, उसको सेंड करें आप 3636 पर। और जनाब मैसेजेस तो बहुत सारे आ रहे हैं मगर बहुत सारे लोग नजर नहीं आ रहे। भाई संजू कहाँ हो, तो आ जाए जल्दी से भाई, यानी कि समझ रही है ना आप। हाँ जी जी, हाँ जी। और जनाब नदीम भाई आपको मेरा सलाम, सभी सुनने वालों को भी मेरा सलाम। दुखी सॉन्ग लगा दो भाई, मिर्जा नईम बेग लॉरी साहब, आज कोई दुखी का मूड नहीं हो रहा, मेलो से ट्रैक चल रहे हैं भाई, अब क्यों माहौल दुखी बना रहे यार। एक बंदा खुद दुखी होता है तो सबको दुखी कर देता है। लॉरी साहब जरा मेरी बात को गौर से सुनिएगा, आपका मूड, आपका दिल दुखा हुआ है, कोशिश करें कि उसको बहलाएं। बहलाने से मुराद ये है कि ऐसे माहौल में रहें कि जिसमें थोड़ा सा तंजो मिजाज चल रहा हो, हंसी मजाक, लाइट बातें चल रही हैं, उसमें आपका दिमाग उधर लग जाएगा, दिल उस तरफ आ जाएगा, तो दिल और दिमाग में जो दुख है वो थोड़ा सा गायब हो जाएगा वक्ती तौर पर। सही सही ना गे, अब आप दुखी, मैं आपको ऐसे दुखी गाने सुनाना शुरू करता हूँ कि आपका दिल और दुखी हो जाए और आप जो है आंखों में आंसू भी आ जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए लॉरी साहब, तो लिहाजा आप जो है ना, यानी कि समझ लें। और इनामुल हक आ गए हैं भाई, क्या बात है। इनामुल हक का मैसेज पढ़ेंगे इस ब्रेक के बाद।
1: FM 100 टाइम चेक, इट्स 2 PM।
2: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैस कैश।
1: लाइक अस ऑन facebook.com/fm247365
3: 7365। कुदरत का निजाम तवाजन पर कायम है, वसाइल से ज्यादा आबादी के बोझ से तवाजन बिगड़ जाता है। घर के अफराद और आमदन में तवाजन
4: हमारी जिम्मेदारी है। खानदानी मंसूबा बंदी के तरीकों पर अमल करके अपनी जिम्मेदारी पूरी करें।
5: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
1: FM 100
5: 31 साल FM 100 आपकी आवाज। अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान,
1: अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान।

0: आएंगे सुने हो आप सबको। अच्छा भाई, जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है उनको बता दें जनाब, मेरा नाम है नदीम अख्तर और प्यार से आप लोग मुझे कहते हो एन ए सोने। हैप्पी आवर्स में मैं हूं आपके साथ, आपका और मेरा साथ जो है वो है 3 बजे तक, और 3 बजे तक ये हल्ला गुला जारी सारी है। और इनाम उल हक का मैसेज पढ़ रहे थे, कह रहे थे अस्सलाम वालेकुम अख्तर भाई, कैसे हैं आप? आंटी चाची और सब सुनने वालों को सलाम। अख्तर भाई, कल सुबह से हमारी लाइट नहीं है, आप लाइट से चलते हैं? हाय अल्लाह, गर्मी बहुत है। मैं तो मजाक कर रहा था बच्चे, आपके घर की लाइट नहीं है, आपके एरिया की लाइट नहीं है। इनाम उल हक भाई, क्या किया जा सकता है यार, हम बस एक दूसरे को दिलासा दे सकते हैं और खाम खा के आईडिया दे सकते हैं भाई, सोलर लगा ले, प्लेटें लगा लो भैया, जनरेटर ले आओ भैया, यूबीएस लगा लो भैया, इस तरह की कहानियां ऐसी चल रही हैं हमारी, और कोई नहीं है। ये नहीं कि एहतजाज करें, ये नहीं कि उनको जाकर गले से, अभी पेट्रोल बढ़ गया भाई, खाम खा बढ़ गया भाई, ये खाम खा है, वो रीजन तो बताएंगे आपको, लेकिन है खाम खा। लाला कहते हैं कि मुझ चंजू की सबर का पल जल्दी खराब हो जाता है। मुश्क और संजू के सबर का फल जल्दी खराब हो जाता है। ये क्या बात हुई? और सभी भाई के सबर को सलाम है भाई, सलाम है भाई, सभी भाई आपके सबर को सलाम है भाई। अच्छा, नौरीन बना कहती हैं, अरे भाई नौरीन बना, ये क्या आप भेज दिया, शादी वादी भेज दी क्या? अच्छा, ये शायरी टाइप का कुछ भेजा इन्होंने, तो पढ़ सकते हैं भाई शायरी टाइप का। तो नदीम भाई, ये मैं भी पढ़ता हूँ, पहले छोटे छोटे मैसेज हो जाए। नदीम भाई मेरा सॉन्ग, उसके बाद कह रहे हैं थैंक यू। भाई चला दिया यार, जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा, यानी कि आपने कहा था कि नदीम भाई गाना 2 बजे से पहले चलाइएगा, तो हमने चला दिया 2 बजे से पहले। हमारे उन्हें नूडल बड़ा पसंद है, आपकी उनको नूडल क्यों पसंद है पहले ये बताएं, आपको पता है कि नूडल कितना नुकसानदेह होता है? तो समी साहब, पहले आप एक काम कीजिए कि इंटरनेट पर जाइए, वहां पर जाकर आप सर्च कीजिए और देखिए कि नूडल जो है वो खाने से क्या होता है, मतलब क्या नुकसानात होते हैं, ये नुकसानात आपको पता चलेंगे, तो फिर आपकी मर्जी है कि आप अपनी उनको नूडल खाने दें या ना खाने दें। हैं जी, थे हैं जी संजू के, मुझे लग रहा है कि आ रही है संजू, संजू को हम बुला रहे थे और आखिरकार संजू आ गए। चलिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, खुश आमदीद, सलामती की आफियत की अनगिनत दुआएं, हमेशा खुश आबाद रहे, जिंदगी बहुत हसीन है, आए इसके रंगों को जज्ब करें, वाह वाह वाह वाह, वरना जिंदगी बेरंग हो जाती है। देखे यार संजू, तुम्हारे इसी प्यारे प्यारे से मैसेजेस का मुझे इंतजार रहता है कि इसमें क्या खूबसूरत बात जिंदगी के हवाले से की है कि जिंदगी बहुत हसीन है। ये बात मैं वैसे बता चुका हूँ आपको कि अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में भेजा तो कितनी नेमतें, जब चाहते हैं केला खा लेते, जब चाहते हैं तो चौसा आम चूसते थे, जब चाहते हैं खरबूजा खा लेते हैं, जब चाहते मतलब फ्रूट जितने भी हैं हम खा लेते, उसके बाद मतलब बर्गर पिज्जा, फिर घर के पके हुए खाने, कढ़ाइयां छड़ाइयां, ये अल्लाह ताला की नेमतें ही हैं। तो जिंदगी बहुत हसीन है और इसके जो रंग हैं, ओए हाय, ये सब रंग बता रहा हूं आपको। अब रंग जो आ जाते हैं ना, वो मोहब्बतों के भी आ जाते हैं, आपके दोस्त हैं, आपके अहबाब हैं, आपके चाहने वाले हैं, आप जिनको चाहते हैं वो हैं, और रिश्ते हैं वो जिनसे हम मोहब्बत करते हैं, ये सब रंग हैं, इनको अपने अंदर जज्ब कीजिए वरना जिंदगी बेरंग हो जाती है। हाय, जब ये सब कुछ भी नहीं हुआ, इंसान अकेला हो तो क्या करेगा, हमारे रेडियो सुन लो बस। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच, इतने प्यारे से जुमले को भेजने का संजू। और कह रही लाला के लिए आफियत की दुआएं, नौरीन बहना जरीन नूर को भी प्यार। वैसे आप एक बात तो बताएं संजीदा साहिबा, यानी कि उर्फ संजू, आप कहां गायब थी, ऑलमोस्ट 1 घंटे तक सुन रही थी या मेहमान नवाजी में मसरूफ थी? फरीदा बुरहानुद्दीन भी आ गई हैं और कह रही हैं कैसे हैं आप, आपकी तबीयत कैसी है? ओके ठीक है।
1: मैं भी आ गई, मैं नूडल नहीं खाती, मैं पास्ता खाती हूँ।
0: پربوت کا ہے، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ خیر نوڈلز کے حوالے سے آپ لوگ نہیں کھاتے ہیں، صحیح ہے؟ آپ کے گھر میں بچے کھاتے ہیں؟ زیادہ تر یہ ٹین ایجرز کو اور بچوں کو پسند ہے۔ ابے اچھا بھائی ٹھیک ہے، نیوتا آیا ہے، اس نیوتے میں چائے آئی ہے۔ چلے اسی بات پر ہم چلتے ہیں ایک ٹریک کی جانب، اور بھائی کس نے فرمائش کی تھی، ہم ذرا فرمائش دیکھ لیتے ہیں۔ پہلے لالا کی فرمائش، ہاں لالا نے فرمائش کی تھی، پہلے لالا کی فرمائش کی جانب جا رہے ہیں۔ بھائی لالا نے کہا تھا کہ بھائی جیگر ماہین کو، شیربانو کو، نگات کو ایک صوفیہ کیف کا گانا اگر سنا دو تو کیا بات ہے۔ تو لالا آپ کی جانب سے، لالا ایک گانا یہ تو چلا ہی رہا ہوں، ایک گانا اور چلے گا آم کے حوالے سے، جو آپ نے اتنی محبت اور پیار سے آم بھیجا ہے اس حوالے سے بھی، لیکن یہ فی الحال آپ کی جانب سے ہے۔ ایلو پھڑو، چل جا بھائی، نہیں چلے گا، چل گیا۔

वेलकम बैक, कहेंगे शाबान नखरा गोरी दा बाबा नखरा गोरी दा मनोड़ा में हमारे इनाम भाई याद आ गया मुझे। वैसे इत्तफाक ऐसा है इनाम भाई, मैं ऑफिस के काम के सिलसिले में टर्टल बीच हो गया, ये हॉक्स बे हो गया और सैंसपिट हो गया, इस जानिब गया था, समंदर की जानिब नहीं गया, बस अपने काम से उधर कुछ गया हुआ था। तो अगर मनोड़ा आता तो जरूर आता आपकी जानिब, यानी कि समझ रहे ना आप। तो समंदर समंदर है और समंदर समंदर है। अलीमुद्दीन यूसुफजई साहब क्या कह रहे हैं? अरे भाई ये सुदुरुस्त हो जाओ यार, ठीक है। अलीमुद्दीन साहब कुछ कह रहे हैं, वो पढ़ते हैं हम। कहां गया मैसेज उनका? ये रहा जनाब। सलाम के बाद उन्होंने फरमाइश कर दी है जनाब सजाद अली या नूरजहान की, और उसके साथ साथ कहते हैं भेजिए, उन्होंने शुक्रिया भी अदा कर दिया अयूब लाला को, नसीम कुरैशी, खिताब लाला, समी शेख, इमरान रियाज और आपके वाजिबुल एहतराम वालिदे मोहतरम की खिदमत अकदस में अकीदत भरा सलाम उन्होंने पेश किया है। अलीमुद्दीन यूसुफजई साहब ए बेरिया कराची से। और नदीम साहब आपको सलाम, आप बढ़ाई गए हो मालूम, कोई बात नहीं, अब आप शो नहीं आऊंगा, वैसे दिल मना रहता है, ये उम्र रुबाब है, आप बदल गए हो। अरे हम नहीं बदला हूँ, हम तो वैसे का वैसा ही हूँ। आप क्या सोच रही थी उम्र रुबाब कि हमको कैसन होना चाहिए? अच्छा जी,

अच्छा ये फरहीन कह रही हैं कि कल से बादल आए हुए हैं मगर बरस नहीं रहे, कराची वालों से कोई नाराजगी है क्या? इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में, खैर कुछ कह नहीं सकते। और फरीदा बुरहानुद्दीन भी कुछ कह रही कह रही हैं, कसाई भी नहीं खाता नूडल्स पास्ता भी, और वो भी अच्छी बात है नूडल्स नहीं खाता, और ना ही मैं फ्रिज में ठंडे पानी बोतल होती है और ना ही बर्फ, शरबत एक गिलास हल्का ठंडा करने के लिए रख देते हैं। ये बड़ी अच्छी चीजें बताई हैं आपने फरीदा बुरहानुद्दीन, ऐसा होना चाहिए। डॉक्टर्स भी कहते हैं कि बहुत ज्यादा ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए हमें, नॉर्मल पानी या थोड़ा सा ठंडा पानी पी लेना चाहिए। और इस हवाले से बड़ी अच्छी अच्छी सी बातें हमसे की। चले जनाब इसी बात पर हम जा रहे हैं एक छोटी सी नन्नी मुन्नी सी ब्रेक की जाने, और उसके बाद हमने एक ट्रैक डेडिकेट करना है।

0: Happy Hour with Nadeem Akhtar.
1: Brand new Honda City चाहिए है बस 20 दिन तक अपने इजी पैसा अकाउंट में 1 लाख रुपए का बैलेंस मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में जीते ब्रांड न्यू होंडा सिटी. सिर्फ यही नहीं, अपने इजी पैसा अकाउंट में 5,000 रुपए डिपॉजिट करके पाए ईवी बाइक, आईफोन और आईपैड्स जीतने का मौका. तो फिर देर कैसी, क्या पता अगले विनर आप ही हो. इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक.
2: 100 FM. अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और ये लो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो. तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद ये लो बाय जैस कैश.
0: FM 100 Like us on facebook.com/FM247365.
3: FM247365. वेलकम बैक कहेंगे सोनियो भाई. हमारी प्यारी सी बहन जरीन नूर की जानिब से हम ट्रैक डेडिकेट कर रहे हैं किनको? हमेशा वो संजू को करती हैं. तो संजू आपके लिए गाना है एलो फड़ो.

0: वेलकम बैक सुने हो, और उम्मीद करता हूँ कि ये ट्रैक पसंद आए होंगे आपको। जालिमा भी संजू को जरीन नूर ने जो ट्रैक डेडिकेट किया वो भी आपको पसंद आया होगा। मुर्तजा कजलबाश का ट्रैक था और ये था अब्दुल हन्नान का। नए सिंगर्स को भी आप प्रमोट करें आप लोग। हाय हाय, संजू कह रही है केले केले चौंसा आम जो है वो ठूस नहीं लीजिएगा। संजू आपके लिए पेटियां भेज देते हैं, आप उगम करें। ये तो हमारे अयूब लाल आए थे, अब जबरदस्त। अच्छा भाई, क्योंकि वक्त बड़ी तेजी से गुजर रहा है तो कुछ बातें हो जाएं, जैसे मैंने फ्रूट की बहुत सारी बातें की, अल्लाह ताला की नेमतें, इसी तरह अल्लाह ताला की नेमतें और भी हैं, और वो है फूलों की सूरत में। कितने बेतहाशा फूल है, चमेली की खुशबू जो है, रात की रानी की जो खुशबू है, गुलाब की जो खुशबू है, और भी बेतहाशा फूल है, उनकी अपनी अपनी खुशबू है। वो इंसान के मिजाज और मूड को चेंज कर देती है, ऐसा है कि नहीं है? यानी कि खुशबू का भी जिंदगी पर असर होता है। और जैसे कि मोतिया फूल जो है, मोतिया की भी जो खुशबू होती है, आए हाय क्या बात है। अच्छा, मोतिया जो है वो ज्यादातर खवातीन बहुत पसंद करती हैं, उसकी खुशबू को भी बहुत पसंद करती हैं। घर में अगर पौधा लगा हुआ है मोतिया के फूल का, तो उसकी कलियां तोड़कर कानों में भी पहनी जाती थी वंस अपॉन अ टाइम। मेरी अम्मी को भी बहुत पसंद था मोतिया, मोतिये के गजरे, हाय हाय। और वो हाथों के जो वो बन जाते हैं उसको गजरे कहते हैं ना। तो खुशबू का जो है वो जिंदगी पर बड़ा असर होता है। बहुत से लोग जो है वो खुशबू जो है इस्तेमाल ही नहीं करते। भाई संजू कह रही हैं, उनके असल में मैसेज मेरे सामने सामने, तो नालो नाल वो इसमें शामिल हो रही हैं, और ये बड़ी अच्छी बात है। तो कह रही बिल्कुल खुशबू असर करती है। बल्कि पागल करती है, ये बात भी है आपको। अब इनके पागलपने से, मतलब इस जुमले से मैं आपको मिसालें भी दे सकता हूँ। खुसूसी तौर पर कुछ खुशबुएं ऐसी होती हैं कि इंसान को घुमा देती हैं, दिमाग घुमा देती हैं, और ये हकीकत है। अच्छा भाई कह रही हैं कि चौंसा आम अकेले मत ठूसिएगा, वरना मैं लड़ने आ जाऊंगी। आजकल मैं बहुत लड़ाइयां कर रही हूँ। बिल्कुल लड़ाई करने का कोई मूड नहीं इस हवाले से, खुसूसी तौर पर ये लाला की जानिब से भी बोल रहा हूँ, मैं अपनी जानिब से भी बोल रहा हूँ। जितना आम चाहिए आप मेरे को बताओ यार। अच्छा भाई, मुझसे सवाल भी किया गया है, कुछ लोगों ने किया, भाई खुशबू जो है वो क्या आपकी जिंदगी पर असरअंदाज होती है? बेतहाशा गिरविदा हूँ मैं खुशबू का। बल्कि मैं क्या यार, हर इंसान जो है वो खुशबू को पसंद करता है। आपका क्या ख्याल है? आप लोग मुझे मैसेज करके बताइए कि एच आई स्पेस आपका नाम, आपका मैसेज उसको सेंड कीजिए 3636 पर, और ये बताइए कि खुशबू जो है वो आपकी शख्सियत पर, आपके जहन पर, आपके दिलो दिमाग पर असर करती है, असरअंदाज होती है। लेकिन कुछ लोग बेचारे ऐसे भी हैं, ऐसे लोगों को भी जानता हूं जिनको खुशबू से एलर्जी है। उनको खुशबू पसंद है, ऐसा नहीं कि उनको पसंद नहीं है, लेकिन उनको एलर्जी है। खुशबू थोड़ी सी सूंघ लें तो छींकने मारना शुरू कर देते हैं, ऐसा भी होता है। खैर, लेकिन खुशबू जो है, अब खुशबू के हवाले से मैं आपको एक और बात बताऊं। कुछ लोगों का ट्रेंड होता है, ट्रेंड से मुराद ये है कि कोई भी खुशबू वो इस्तेमाल करते हैं तो बस उसी का इस्तेमाल सारी जिंदगी करते हैं, वो उनकी पहचान बन जाती है। और वो ऐसी पहचान बन जाती है कि ऐसा मेरा साथ रहा है, मेरी जिंदगी में ऐसे बहुत सारे मेरे दोस्त अहबाब, मेरे रिश्तेदार ऐसे रहे हैं कि वो खुशबू उनकी पहचान बन गई। और फिर ऐसा हुआ कि कभी किसी ने वही खुशबू लगाई हुई है तो उस खुशबू को सूंघने के बाद ये एहसास हुआ कि शायद वो हमारे सामने बैठा हुआ, उसकी याद आने लगी। ये भी होता है यार, कितनी अच्छी बातें हो रही। क्यों ना खुशबू के हवाले से कोई बात की जाए, मतलब पूरा शो किया जाए। अच्छा जी, मेरे घर के सामने आम वाले का चौंसे आम का ठेला होता है, बस लड़ने को दिल जाता है। क्यों भाई? और इस बात पर उन्होंने तस्दीक की है कि वाकई खुशबू पहचान होती है, और हर इंसान अगर मतवातर एक ही खुशबू इस्तेमाल करता है तो वो उसकी पहचान भी बन जाती है। अच्छा, ऐसा भी होता है कि मुख्तलिफ खुशबू, मतलब परफ्यूम की बात कर लें, मुख्तलिफ परफ्यूम्स जो हैं मुख्तलिफ ब्रांड्स के, जिनके फ्रेग्रेंस डिफरेंट टाइप की होती है, वो लोग यूज करते रहते हैं, मगर कुछ लोग एक ही इस्तेमाल करते हैं। तो जनाब खुशबू का असर होता है, तो इसी खुशबू की बुनियाद पर हम जाएंगे एक ब्रेक की जानिब।
1: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सरदर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें, गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें, लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात आपकी हिफाजत।
2: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: Like us on facebook.com/FM247365 FM247365

सुनियो मैसेजेस आप क्या आ रहे हैं कि चाहे स्पेस आपका नाम आपका मैसेज उसको सेंड करें 36361। मेरी बहना नौरीन कह रही हैं, क्या कह रही हैं भाई, इनका मैसेज हमने पढ़ा नहीं था, हमने बोला था कि यार सुकून से पढ़ेंगे। आदिल लखनवी साहब ने साइकिल के हवाले से कुछ कहा है जो कि हमारी नौरीन बहना ने हमें कहा है कि वो कहते हैं एक रोज जा रहे थे कहीं साइकिल से हम पहुंचे जो एक मोड़ पर नाजिल हुआ सितम पैदल से साइकिल के जो पांव उखड़ गए हम जाके एक शोख हसीना से लड़ गए आए अल्लाह जी संभली जो वो तो हत्थे से फौरन उखड़ गई गोया हुई तो जैसे हवाओं से लड़ गई कहने लगी कि अंधे हैं आता नहीं नजर ये हरकतें जनाब किए हैं रेशे मोतबर फिरते हैं क्या शरीफों की सूरत बना के आप यूं औरतों पे गिरते हैं दाढ़ी रख के आप हमने कहा कि थूक दो गुस्से को नाजनी साइकिल लड़ी है तुमसे ये दाढ़ी लड़ी नहीं दाढ़ी का नाम लेकर हमें क्यों हो टोकती ये दाढ़ी है कोई ब्रेक जो साइकिल को रोकती और क्या बात है दाढ़ी है कोई ब्रेक जो साइकिल को रोकती। अच्छा ये इस एक बड़े खूबसूरत सा ये एक जो बात लिखी है आदिल लखनवी साहब ने ये हम लोगों की आदत हो गई है भाई साइकिल टकराई है हसीना से।

0: आप ये कह रहे हैं हमारे प्यारे से राज दुलारे से आंखों के तारे से महफूज अभी प्रोग्राम करेंगे म्यूजिक मस्ती और महफूज, उनसे कीजिएगा फरमाइश तो वो आपकी फरमाइश को पूरा करेंगे। मैं नहीं समझ रही है भाई, मुश्क नहीं समझ रही, मुश्क मजाहिया शायरी जो होती है ना, जो आप करती हैं अक्सर वो कर सकती हैं। समी कह रहे हैं भाई नदीम भाई क्यों सुला रहे हो, समी अभी जगाएंगे आपको, डोंट वरी, अभी बहुत अच्छे तरीके से जगाएंगे आपको। और जनाब जब मेहमान आते हैं तो उनके लिए ठंडे पानी की बोतल और बर्फ भी रखी होती है।
1: फरीदा बुरहानुद्दीन हमारी बहन ने मैसेज किया है।
0: हाय जनाब, इसके साथ ही अब आपसे इजाजत भी चाहनी है और जाते जाते जनाब हमने जैसे क्या कहा था
1: कि सज्जाद अली का गाना जो है वो हम आपको डेडिकेट करेंगे।
0: जनाब सज्जाद अली की फरमाइश जो है वो हमारे प्यारे से अलीमुद्दीन साहब ने भी की थी, हमारी मेमन फैमिली को भी डेडिकेट करेंगे जनाब, पूरी मेमन फैमिली को। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे कल रात म्यूजिक ट्विस्टर में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।

0: हाय हाय, कुछ शिक्षा कुछ मजबूरी थी सो मैंने जीवन हार दिया।
1: मुझे कोई लगता है अच्छा लगा होगा गाना।
0: सदर कराची से शफी जान शनाई, वेरी नाइस प्रोग्राम भाई, आप द प्रवीण का आवाज भजन इतने आखिर में।

0: put your hands up.
1: Gonna dance.
2: You're listening to Music Masti. Music Masti.
3: बिल्कुल आप सुन रहे हैं म्यूजिक मस्ती और मुझे कहते हैं महफूज मस्ती जारी सारी है हमारा आपका साथ अब से लेकर ठीक पांच बजे तक रहेगा और चार से पांच आप सॉफ्ट मेलोडी सुनेंगे और तीन से चार आपने तेज गाने सुनने हैं फास्ट ट्रैक सुनने हैं इसी तरह से हमारा प्रोग्राम आगे की तरफ जानी बढ़ता रहेगा अगर आपकी आज बर्थडे है तो जरूर हमें बताइएगा हम आपको मुबारकबाद पेश करेंगे या कोई भी इवेंट है अगर कोई भी खुशी की खबर है तो आप मुझे जरूर शेयर कीजिएगा हम आपके लिए जनाब गाना भी प्ले करेंगे साथ साथ किसी को विश करना है डेडिकेट करना है कोई अच्छी सी बात करनी है हम हाजिर खिदमत है एफएम 100 पाकिस्तान का ये प्लेटफॉर्म आपके लिए हाजिर खिदमत है आइए और छा जाइए और अच्छे अच्छे गानों की फरमाइश कीजिए उल्टा मत कीजिएगा अभी तेज गानों की फरमाइश कीजिएगा और चार से पांच सौ मेलेडीज की फरमाइश करिएगा और तरीकेकार बहुत ही आसान और पुराना और बड़ा सुहाना अपने राइट मैसेज में जाइए के एच आई लिखिए स्पेस दीजिए अपना मैसेज टाइप कीजिए 3666 पर रवाना कीजिए इसके साथ साथ facebook.com/rjmehfooz पर डायरेक्ट आ सकते हैं यहां आप फेसबुक पर सर्च कर सकते हैं आरजे महफूज और कीजिए फरमाइश और छा जाइए प्रोग्राम में शामिल करेंगे बिजली जो कि आती नहीं है घर में

0: You are listening. Music. Musti.
1: It's 3:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
2: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शॉबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जर्नल होम्यो और शॉबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
3: कहीं फिर से रहमो चाचा, अपना डांगा लेकर ना आ जाए. वो मुझे अपनी गोद में बिठाएंगे, मैं अम्मी को भी बताने से डरती हूँ.
4: आमतौर पर यही समझा जाता है कि बच्चों के साथ जिनसी बदसलूकी सिर्फ अजनबी करते हैं, मगर ऐसा नहीं है. दरअसल ये वो लोग होते हैं जिन पर माँ बाप आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं. बच्चों को समझाएं, चाहे अपना हो या पराया, इनकी मर्जी के खिलाफ कोई इन्हें छुए तो आपको फौरन बताएं. जिनसी बदसलूकी के बचाव के लिए बच्चों में अपनी हिफाजत करने की समझ बूझ पैदा करें. पाकिस्तान का आईन और कानून हर बच्चे को जिस्मानी और नफसियाती हक फराहम करता है. तहफ्फुज़ हर बच्चे का हक है, आए इसे यकीनी बनाएं. मजीद मालूमात और मशवरे के लिए हेल्प लाइन 1099 पे कॉल करें. वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान.
5: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया.
6: FM 100 like us on facebook.com/FM247365.
7: FM 247365.
0: Music.

All right, आ चुके हैं वापस, आप सुन रहे हैं म्यूजिक मस्ती और मुझे कहते हैं महफूज। बारी है आपके मैसेजेस की, काफी देर से आपके मैसेज मुझे कह रहे हैं कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो पढ़ो पढ़ो, मेरी फरमाइशें पूरी करो करो करो करो। अच्छा जी, नुसरत हमें मैसेज कर रहे हैं, कह रही हैं माशाल्लाह बहुत अच्छा शो है और गाने भी अच्छे हैं, बहुत शुक्रिया। इसके अलावा सरी महमद हमें मैसेज कर रहे हैं, सलाम कर रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम, आप भी शो सुन रहे हैं और अच्छा लग रहा है। इसके अलावा रिजवाना हमें सुन रही हैं और आपने कहा है कि बहुत अच्छा शो है और गाने अच्छे हैं और फरमाइश सॉफ्ट मेलोडी की है, हम यकीनन अगले हाफ में पूरा करेंगे। इसके अलावा कैसर में मैसेज कर रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, वालेकुम अस्सलाम, आपकी फरमाइश जरूर पूरी करेंगे। मोहसिन अली हमें मैसेज कर रहे हैं, सलाम करें, शो इज गुड, हैप्पी संडे, हैप्पी संडे। हमजा मैसेज करें, हमजा बहुत शुक्रिया सुनने और पसंद करने के लिए, वालेकुम अस्सलाम। उज्मा में मैसेज करिए, वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया सुनने और पसंद करने के लिए, थैंक यू सो मच। इसके अलावा फरा में मैसेज करिए, फरा बहुत बहुत शुक्रिया सुनने और पसंद करने के लिए, वालेकुम अस्सलाम, आपकी फरमाइश जरूर पूरी करेंगे। हामिद सुन रहे हैं, हामिद थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मीन, वालेकुम अस्सलाम, आपकी भी फरमाइश पूरी करेंगे। उमेहानी हमें सुन रही है, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, आपकी फरमाइश हमने नोट कर ली है, हैप्पी संडे। फेमिना हमें सुन रही है, पहली मरतबा सुन रही है, सलाम करिए, वालेकुम अस्सलाम। और फरहान हमें सुन रहे हैं, फरहान वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। आप सबकी फरमाइश हमने पूरी करनी है, साथ साथ आपके मैसेज पढ़ेंगे, साथ साथ आपसे ढेर सारी बातें भी करेंगे। एक खूबसूरत से गाना के साथ हम आगे बढ़ते हैं, आपकी फरमाइश है और फरमाइश हमने पूरी कर दी है।

0: You are listening. Music. Musti.
1: ब्रांड न्यू होंडा सिटी चाहिए है, बस 20 दिन तक अपने इजी पैसा अकाउंट में 1 लाख रुपए का बैलेंस मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में जीते ब्रांड न्यू होंडा सिटी। सिर्फ यही नहीं, अपने इजी पैसा अकाउंट में 5,000 रुपए डिपॉजिट करके पाएं ईवी बाइक, आईफोन और आईपैड्स जीतने का मौका। तो फिर देर कैसी, क्या पता अगले विनर आप ही हो। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
2: Like us on facebook.com/fm247365
0: FM 247365. Music.

0: You are listening. Music. Masti.
1: बच्चों का ऑनलाइन तहफ्फुज आपकी जिम्मेदारी है. अपने बच्चों को ऑनलाइन राब्तों का महफूज तरीका इस्तेमाल सिखाएं. इंटरनेट के जरिए खेलों, तफरी और तालीमी सरगर्मियों में शामिल होने के फवायद जरूर हैं, लेकिन इसमें नामुनासिब मवाद, साइबर बुलिंग और दीगर ऑनलाइन नुकसान जैसे मुमकिन खतरात भी मौजूद हैं. वालिदैन और असातिज़ा की जानिब से बच्चों की निगरानी और रहनुमाई न होने की सूरत में बच्चे बासानी मनफी सरगर्मियों का शिकार हो सकते हैं. वालिदैन को अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों के हवाले से आगाह और होशियार रहने की जरूरत है. बच्चों को नुकसानदेह मवाद जैसे नफरत अंगेज तकरीर, गुस्ताखाना और फाहश मवाद वगैरह अपलोड और शेयर करने के कानूनी नतायज के हवाले से भी शऊर और आगाही इंतहाई अहमियत की हामिल है. पीटीए की वेबसाइट पर पेरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर की एक फहरिस्त दस्तियाब है, ताकि वालदैन अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों की निगरानी करते हुए उन्हें ऑनलाइन नुकसान से महफूज रखें. www.pta.gov.pk. मुफादे आमा के लिए ये पैगाम FM 100 और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
2: 100 FM.
3: Hi friends, I am Mikal Zulfikar and today I am not speaking to you as a public figure, but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs and let's stand together.
1: Ye paigham hukumat e Pakistan ki janib se pesh kiya gaya.
4: फ्रॉड और जाली पैगामात से होशियार रहें. फ्रॉड करने वाले जाली पैगामात और कॉल्स के जरिए आपकी जाती या माली मालूमात हासिल करने की कोशिश करते हैं. ऐसे पैगामात पर बिल्कुल यकीन न करें जिनमें इनाम, अकाउंट बंद होने या आपको आपकी जाती मालूमात की वेरिफिकेशन का कहा जाए. याद रखें, ये फ्रॉड भी हो सकता है. आइए जानते हैं फ्रॉड के आम तरीके. पीटीए बैंक या सरकारी अदारे का नुमाइंदा बनकर आपसे आपकी जाती मालूमात तलब करना, जाली कोरियर या हुकूमती स्कीमों का नाम इस्तेमाल करते हुए आपको झांसा देना, आपको मशकूक लिंक्स या QR कोड्स भेजना. याद रखें, पीटीए बैंक या कोई भी सरकारी अदारा कभी भी फोन, ईमेल या पैगाम के जरिए आपसे पासवर्ड, OTP या CNIC नहीं मांगता. लिहाजा किसी भी मशकूक लिंक पर हरगिज क्लिक न करें और अपनी मालूमात हरगिज किसी के साथ शेयर न करें. और अगर कोई फ्रॉड कॉल या पैगाम वसूल हो, इसका जवाब मत दें. अपनी शिकायत का इंद्राज complaint.pta.gov.pk या पीटीए CMS मोबाइल ऐप पर रिपोर्ट करें या पीटीए की हेल्पलाइन 0800-55055 पर अपनी शिकायत का इंद्राज करें. व्हाट्सएप पर मौसूल होने वाला पैगाम बराह रास्त व्हाट्सएप को रिपोर्ट करें. इसके अलावा साइबर क्राइम के हवाले से आप अपनी शिकायत का इंद्राज 1799 या complaint.nccia.gov.pk पर भी कर सकते हैं. बैंक फ्रॉड के लिए cpd.helpdesk.sbp.org.pk पर विजिट करें. याद रखें, आपकी आगाही ही आपका तहफ्फुज है. डिजिटल दुनिया में महफूज कदम, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी.
5: ये मुफादे आमा का पैगाम आप तक पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है.
6: facebook.com/fm247365
7: fm247365.
8: It's time to turn up the volume and kick the boredom out the door. This is FM 100 Pakistan.
9: राइट, आ चुके हैं वापस. आप सुन रहे हैं म्यूजिक मस्ती और मुझे कहते हैं महफूज. आपके मैसेजेस हम पढ़ने लगे हैं, उसके बाद एक बढ़िया सा गाना आपके लिए जरूर हम प्ले करेंगे. अदनान ने हमें मैसेज किया, सलाम का, वालेकुम अस्सलाम, शो इज गुड, हैप्पी संडे. हैप्पी संडे, वालेकुम अस्सलाम. इसके अलावा हसन अली हमें मैसेज करें, सलाम करें, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, आपकी फरमाइश मैंने नोट कर ली है. सवालिया हमें मैसेज करिए, सलाम करें, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपके सुनने और पसंद करने के लिए. अब्दुल जब्बार हमें मैसेज कर रहे हैं, सलाम करें, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, आपकी भी फरमाइश मैंने नोट कर ली है, पूरी करने की भरपूर कोशिश करेंगे. अब्दुल गफार हमें मैसेज करें, सलाम करें, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया सुनने.

All right, आप सबके मैसेजेस हम पढ़ने लगे हैं, उसके साथ साथ आपकी फरमाइशें भी हम पूरी कर रहे हैं। साबिर हमें मैसेज करें, सलाम करें, वालेकुम अस्सलाम, आप शो सुन रहे हैं और शो को पसंद कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। रानी हमें मैसेज करिए, रानी थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, आपने कहा माशाल्लाह अच्छी आवाज है, बहुत शुक्रिया। सुमैरा सुन रही है, सुमैरा बहुत बहुत शुक्रिया सुनने और पसंद करने के लिए, आपकी फरमाइश मैंने नोट कर ली है। काशिफ हमें सुन रहे हैं, काशिफ थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, वालेकुम अस्सलाम, आपकी फरमाइश हमने नोट कर ली है। जमील हमें सुन रहे हैं, जमील बहुत बहुत शुक्रिया सुनने और पसंद करने के लिए। सना हमें सुन रही है, सना थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, वालेकुम अस्सलाम। अहमद रजा हमें सुन रहे हैं, आपने प्रोग्राम की तारीफ की, आवाज की तारीफ की है, बहुत बहुत शुक्रिया। अहमद हमें सुन रहे हैं, अहमद थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, वालेकुम अस्सलाम। तैयबा हमें सुनिए, तैयबा बहुत बहुत शुक्रिया सुनने और पसंद करने के लिए। और वसीम हमें सुन रहे हैं, वसीम थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, वालेकुम अस्सलाम। अपने राइट मैसेज में जाइए, के एच आई लिखिए, स्पेस दीजिए अपना मैसेज टाइप की, जो लिख दीजिए हमें 3636 पर, इसके साथ facebook.com/rjmehfooz।

0: You are listening.
1: You are listening.
0: Music. Musti.
2: SM100. Like us on facebook.com/FM247365.
3: FM247365.
4: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सरदर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें, गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें, लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
2: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.
0: You are listening to Music Musti.
5: जी बिल्कुल, आप सुन रहे हैं म्यूजिक मस्ती और मुझे कहते हैं महफूज। हमारा आपका साथ तकरीबन आधे घंटे का और है, इसमें हम आपको जबरदस्ती म्यूजिक सुनवाएंगे, साथ साथ आपके मैसेजेस हैं, कुछ अपनी बातें भी हैं। हमें सुना जा रहा है कराची में रेडियो सेट्स पे 100 की फ्रीक्वेंसी पे, और रेडियो सेट 100 फ्रीक्वेंसी के अलावा यानी एफएम 100 के अलावा आप हमें वेबसाइट पे सुन सकते हैं, fm100pakistan.com पर जाकर। या अगर आप एंड्रॉयड यूजर हैं, एप्पल यूजर हैं, तो एफएम 100 पाकिस्तान की एप्लीकेशन आप डाउनलोड कीजिए, आसानी आप हमें सुन सकते हैं अपने अपने वक्त के मुताबिक। तो संडे को फंडे बनाइए और एफएम 100 पाकिस्तान को ज्वाइन कीजिए, और चाहे जिस पोर्टल से भी आप ज्वाइन करें, चाहे रेडियो सुने, चाहे आप वेबसाइट सुने, चाहे आप एंड्रॉइड के जरिए मोबाइल के जरिए आप सुने, हर पोर्टल आपके लिए खुला हुआ है। अपने राइट मैसेज में जाइए कि चाहे लिखिए स्पेस, जब अपना मैसेज टाइप कीजिए 3636 पर रवाना कीजिए। इसके साथ साथ facebook.com/rjmehfooz। तो 4:30 बज चुके हैं, यकीनन अब दोपहर शाम में तब्दील होती जाती है और मौसम अच्छा होने लगता है, खूबसूरत होने लगता है। आपके हाथ में चाय का कप होता है, उसके चुस्कियां ले रहे होते हैं, स्नैक्स साथ होते हैं और मजे ले रहे होते हैं आप कराची की शामों की। तो कराची की शाम जबरदस्त होती है, चाहे दिन जैसा हो, शामें बड़ी जबरदस्त होती है कराची की। तो इंजॉय कीजिए अपनी लाइफ को, और आज इतवार है और संडे को आपके इवनिंग के प्रोग्राम्स होते हैं, नाइट के प्रोग्राम्स होते हैं, आप कहीं जाते हैं, आपके घर में कोई आता है, तो अपनी अपने संडे को आप भरपूर बनाइए। और कल है वेरी फर्स्ट वर्किंग डे, तो ताजा दम होकर अपने ऑफिस की जानेब रवा दवा हो जाएं, क्योंकि स्कूल्स की तो छुट्टी है और कॉलेजेस की भी छुट्टी है, यूनिवर्सिटीज खुली हुई हैं। तो आप अगर यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट हैं या अगर आप ऑफिस गोइंग हैं, तो आप चार्ज होकर अपने कामों पर जाइए, अपनी पढ़ाई पर जाइए, मजे लीजिए वेरी फर्स्ट वर्किंग डे के। आपकी फरमाइश पर एक और खूबसूरत सा गाना आपकी समातों की नज़र करेंगे, और आतिफ असलम की आवाज, एंजॉय कीजिए।

0: You are listening to Music Masti.
1: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सर दर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें, गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें, लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
2: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: FM247365. Pure emotions, timeless classics, and soft melodies on FM 100 Pakistan.
4: जी मेरे दोस्तों, आ चुके हैं वापस। आप सुन रहे हैं म्यूजिक मस्ती और मुझे कहते हैं महफूज। थोड़े से मैसेजेस पढ़ेंगे, उसके बाद आखिरी गाना आपके लिए हम पेश करेंगे। सना हमें मैसेज करेंगे, सलाम करेंगे, वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया सुनने और पसंद करने के लिए, आपकी फरमाइश नोट कर ली है। फरीन हमें मैसेज करी है, सलाम कर रही है, थैंक यू कर रही है, बहुत बहुत शुक्रिया। अदील अहमद हमें मैसेज कर रहे हैं, सलाम कह रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया सुनने और पसंद करने के लिए। अजीम हमें सुन रहे हैं, अजीम थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। फौजिया में सुनिए, फौजिया बहुत बहुत शुक्रिया सुनने और पसंद करने के लिए। और नादिया गिलानिया में सुनिए, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, बहुत बहुत शुक्रिया। निगार हमें सुनिए, निगार बहुत बहुत शुक्रिया सुनने और पसंद करने के लिए, पहली मरतबा आप सुन रही है, वालेकुम अस्सलाम। तनवीर हमें सुन रहे हैं, तनवीर थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, वालेकुम अस्सलाम। नोमी हमें सुन रहे हैं, नोमी बहुत बहुत शुक्रिया सुनने और पसंद करने के लिए, वालेकुम अस्सलाम। और शबनम हमें सुन रही है, वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया सुनने और पसंद करने के लिए। आप सबके मैसेजेस का बहुत बहुत शुक्रिया, 3636 पे किए बहुत बहुत शुक्रिया, या आपने फेसबुक पे किए बहुत बहुत शुक्रिया। जहां रहे खुश रहें, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, दूसरों को रखें खुश, बड़ों का करें अदब, छोटों से करें प्यार, अपने वतन का, अपने परशम का करें एहतराम, और जब भी दुआ के हाथ उठाएं महफूज को, एफएम 100 पाकिस्तान को रखें अपनी दुआओं में जरूर जरूर जरूर जरूर याद। अगर आपके वालिदैन हयात हैं, उनसे मोहब्बत कीजिए, उनकी खिदमत कीजिए, क्योंकि दुनिया में ही आपकी जन्नत है, ऊपर जन्नत का वसीला। मेहरबान हो के बुला लो मुझे, चाहो जिस वक्त मैं गया, वक्त नहीं हूं कि फिर आ भी ना सकूं। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट संडे अगले एतवार दोपहर 3 से 5। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, जाते जाते एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना आपकी समातों की नजर करेंगे और आपसे इजाजत चाहेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड फाइनली अल्लाह हाफिज़।

0: తీసుకోరు. ఢిల్లీలో ఫిట్ రహో.
1: खबर से आपको आगाह करेंगे कि पूरे शहर में फैल चुकी है आपके टॉयलेट की बदबू.
2: बंद करो ना ढक्कन.
3: स्वीपी क्लीन करे तेजी से सख्त दाग और जरासीम का खात्मा और रखे टॉयलेट को चमकता हुआ साफ.

0: This program is brought to you by
1: Femex laga aur bhul ja, Femex laga aur bhul ja.
0: And
2: Sweepy Clean kare tezi se sak daag aur jarasim ka khatma aur rakhe toilet ko chamakta hua saaf.
0: And
3: Lifebuoy anti dandruff shampoo with yogurt and egg 100% aage badho bina ruke.
4: कहीं अनजाने में आप दहशतगर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे? होशियार रहें, मुहतात रहें, अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें। हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है। याद रखें, दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी दहशतगर्दी है। हुकूमत पाकिस्तान
5: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
6: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
7: Assalamu alaikum Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैया।
1: हुर्मत रसूल का तकाजा है कि तौहीन रिसालत से मुतालिक किसी भी खबर को बिना किसी तस्दीक के ना फैलाएं। ये पैगाम मुफाद आमा के लिए वजारत इत्तिलात व नशरियात व कौमी विरसा और FM 100 की जानिब से पेश किया गया।
2: 100 FM।
1: कुरानी आयात और अहदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम हम सब पर फर्ज है। ताज़ीरात पाकिस्तान के सेक्शन 295B के तहत कुरान पाक की तौहीन काबिले सजा जुर्म है, जिस पर उम्र कैद की सजा हो सकती है। इसको गंदगी या रद्दी में ना फेंका जाए। ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 की जानिब से पेश किया गया।
3: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, हैदराबाद, रहमान खान, अक्रॉस द नेशन,
4: दिस इज FM 100,
5: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शॉबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन नज़ा लाए हैं, ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और शॉबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।
6: ब्रांड न्यू होंडा सिटी चाहिए है? बस 20 दिन तक अपने इजी पैसा अकाउंट में 1 लाख रुपए का बैलेंस मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में जीते ब्रांड न्यू होंडा सिटी। सिर्फ यही नहीं, अपने इजी पैसा अकाउंट में 5,000 रुपए डिपॉजिट करके पाएं ईवी बाइक, आईफोन और आईपैड्स जीतने का मौका। तो फिर देर कैसी, क्या पता अगले विनर आप ही हो। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।

0: కాశ్మీర్ స్కూల్ ఢిల్లీలో ఫిట్ రహో.
1: खबर से आपको आगाह करेंगे कि पूरे शहर में फैल चुकी है आपके टॉयलेट की बदबू.
2: बंद करो ना ढक्कन.
3: स्वीपी क्लीन करे तेजी से सख्त दाग और जरासीम का खात्मा और रखे टॉयलेट को चमकता हुआ साफ.
4: किसने कहा था

0: आश भी इस्तेमाल डेली लो फिट रहो।
1: नाजरीन ताजा तरीन खबर से आपको आगाह करेंगे कि पूरे शहर में फैल चुकी है आपके टॉयलेट की बदबू।
2: बंद करो ना ढक्कन।
3: स्वीप भी क्लीन करे तेजी से सख्त दाग और जरासीम का खात्मा और रखे टॉयलेट को चमकता हुआ साफ।
4: नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर। इसकी आईओटी टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट नो वरीज।

0: It's 6:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: Hire Kanaya, no frost IoT refrigerator, jiska multi airflow system de balanced cooling har compartment mein aur rakhe aapke refrigerator ko clean. Twin inverter technology jisse mile maximum cooling aur energy saving. No frost, no worries.
2: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तन बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिले भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।
1: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर। इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
0: This program is brought to you by
3: Phoenix Laga aur Bhool Ja, Phoenix Laga aur Bhool Ja,
0: and
4: Sweep Clean. Kare tezi se sakht daag aur jarasim ka khatma, aur rakhe toilet ko chamakta hua saaf.
0: And
5: Lifebuoy Anti Dandruff Shampoo with yogurt and egg, 100% aage badho.

0: इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
2: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैल रहेगी आगे बस।
2: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विद योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
3: नाजरीन, ताज़ा तरीन खबर से आपको आगाह करेंगे कि पूरे शहर में फैल चुकी है आपके टॉयलेट की बदबू।
4: बंद करो ना ढक्कन।
5: स्वीपी क्लीन करे तेजी से सख्त दाग और जरासीम का खात्मा और रखे टॉयलेट को चमकता हुआ साफ।
6: हायर नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर, इसकी आईओटी टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
7: किसने कहा था पैसे बचा।

0: It's 6:45 PM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन टू इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग नो फ्रॉस्ट नो वरीज
3: फिट रहो
2: नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल नो फ्रॉस्ट नो वरीज
0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
1: फिनिक्स लगा और भूल जा फिनिक्स लगा और भूल जा
4: एंड स्वीपी क्लीन करे तेजी से सख्त दाग और जसीम का खात्मा और रखे टॉयलेट को चमकता हुआ साफ
0: And
2: Lifebuoy Anti Dandruff Shampoo with yogurt and egg. 100% aage badho bina ruke.
0: And
5: Tufaan hai, har jeet ki pehchaan hai.
0: 100 FM.
6: Hi friends, I'm Mikal Zulfikar. And today I'm not speaking to you as a public figure, but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives, and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle. But they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs, and let's stand together.
0: Ye paigham, Hukumat-e Pakistan ki janib se pesh kiya gaya. FM 100. Like us on Facebook.com/FM247365
7: FM247365

0: FM 100's Time Check. It's 7 p.m. This program was brought to you by
1: Phoenix Laga aur Bhool Ja, Phoenix Laga aur Bhool Ja.
0: And
2: Sweepy Clean, kare tezi se sakht daag aur jarasim ka khatma, aur rakhe toilet ko chamakta hua saaf.
0: And
3: Lifebuoy Anti-Dandruff Shampoo with yogurt and egg, 100% aage badho bina ruke.
4: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शॉबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और शॉबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
5: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो. तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो. विद येलो बाय जैस कैश.
6: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन. ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग. नो फ्रॉस्ट, नो वरीज.
7: ब्रांड न्यू होंडा सिटी चाहिए है? बस 20 दिन तक अपने इजी पैसे अकाउंट में 1 लाख रुपए का बैलेंस मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में जीते ब्रांड न्यू होंडा सिटी. सिर्फ यही नहीं, अपने इजी पैसे अकाउंट में 5,000 रुपए डिपॉजिट करके पाएं ईवी बाइक, आईफोन और आईपैड्स जीतने का मौका. तो फिर देर कैसी? क्या पता अगले विनर आप ही हो. इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक.
6: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर. इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल. नो फ्रॉस्ट, नो वरीज.

0: This program is brought to you by Tufaan Hai.
1: कहीं अनजाने में आप दहशतगर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे? होशियार रहें, मोहतात रहें। अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें। हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है। याद रखें, दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी दहशतगर्दी है। हुकूमत पाकिस्तान
2: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
3: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365
4: FM247365
5: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
6: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: 15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: नया नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग नो फ्रॉस्ट नो वरीज
2: खालिस अज्जा भरोसे मंद शिफा श्वाबे सिंगल रेमेडीज कुदरत के बेहतरीन अज्जा से तैयार की गई हैं क्योंकि आपकी सेहत इससे कम की हकदार नहीं डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज 75 सालों से पाकिस्तान में नस्लों का भरोसा
1: हायर नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर इसकी आईओटी टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल नो फ्रॉस्ट नो वरीज
0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
3: तूफान है हर जीत की पहचान है
4: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है अब जंग मैदान जंग में नहीं हमारे जहनों में लड़ी जा रही है अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं मालूमात है और निशाना हम सब रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है वो ढूंढता है कमजोर लम्हे बेरोजगार नौजवान जरूरतमंद खानदान फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब बड़ी नौकरी तेज दौलत बैरूने मुल्क सफर और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो रास निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं जिनसे बदमनी खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है आपकी तस्वीरें पहचान फोन सब कुछ खतरे में डाल देता है तो याद रखिए किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए कोई मशकूक चीज कॉल या पेशकश हो फौरन रिपोर्ट कीजिए हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए क्योंकि हर लफ्ज हर क्लिक हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा फैसला आपके हाथ में है
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया
5: FM 100 Like us on facebook.com/FM247365 FM 247365

0: पीछे पीछे पीछे।
1: तुम स्कूल में इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
2: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
3: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
2: सिर्फ मैं रहेगी आगे बस।
3: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके। किसने कहा था?

0: It's 7:45 PM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix
1: laga aur bhul ja. अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैस कैश।
2: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
3: ब्रांड न्यू होंडा सिटी चाहिए है? बस 20 दिन तक अपने इजी पैसा अकाउंट में 1 लाख रुपए का बैलेंस मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में जीतें ब्रांड न्यू होंडा सिटी। सिर्फ यही नहीं, अपने इजी पैसा अकाउंट में 5,000 रुपए डिपॉजिट करके पाएं ईवी बाइक, आईफोन और आईपैड जीतने का मौका। तो फिर देर कैसी, क्या पता अगले विनर आप ही हो। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।

0: FM 100's time check. It's 8 p.m. This program was brought to you by
1: टैक्स पे करना अब हुआ आसान. अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर. आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैज कैश है ना.
0: 100 FM.
2: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और ये लो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो. तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद ये लो बाय जैज कैश.
0: FM 100. 31 साल FM 100 आपकी आवाज. अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान.
3: अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान.

0: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैस कैश।
1: मंशियात, एक लम्हे की गलती पूरी जिंदगी की तबाही। आइस, हेरोइन, चर्स या किसी भी किस्म की मंशियात, ये वक्ती खुशी नहीं, मुस्तकिल अजियत है। ये जिस्म को कमजोर करती हैं, जहन को मफरूज करती हैं और ख्वाबों को तोड़ देती हैं। एक आदत एक खानदान की खुशियां छीन लेती है। इंसदादे मंशियात फोर्स का पैगाम, मंशियात और गैर कानूनी स्मगलिंग के खिलाफ हमारा अज मजबूत है। आइए अहद करें, अपने नौजवानों को बचाएं, अपने मुस्तकबिल को महफूज बनाएं। 26 जून आलमी दिन बराए इंसदादे मंशियात।

टैक्स पे करना अब हुआ आसान। अभी जैजकैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर। आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैजकैश है ना।

0: में इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
0: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ है 100% पीछे,
1: सिर्फ मैल रहेगी आगे बस।
0: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
2: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो।

0: It's 8:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: टैक्स पे करना अब हुआ आसान। अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर। आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैज कैश है ना।
3: 100 FM। अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैज कैश।
0: दिस पब्लिक सर्विस मैसेज इज ब्रॉट टू यू बाय FM 100। रात में गाड़ी चलाने के दौरान तेज रोशनी देने का मतलब ऐसा ही है जैसे दिन के वक्त हॉर्न बजाना। इसका गैर जरूरी इस्तेमाल मत कीजिए। ट्रैफिक कानून की पाबंदी कीजिए।
4: बैन अल-अक़वामी सतह पर रवाना होने वाले मुतवज्जो हों। ऐसी ऑनलाइन ऐप्स और प्लेटफॉर्म से इज्तनाब करें जो पैसों की इवज किसी नामालूम शख्स का सामान आपके अपने सामान के साथ ले जाने के लिए करें। यह आसान कमाई का तरीका तो नजर आता है लेकिन हकीकत में खतरनाक जाल है। मंशियात फरोश इन्हीं तरीकों को इस्तेमाल करके मंशियात स्मगल कर रहे हैं। याद रखें, अगर आपके सामान से मंशियात बरामद हुई तो कानूनन इस जुर्म के जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। खबरदार, किसी अजनबी का सामान दौरान सफर अपने साथ ले जाना आपके लिए खतरनाक हो सकता है।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
5: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सर दर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें, गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें, लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
6: facebook.com/fm247365 FM 247365

0: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैस कैश।
1: एक लड़की जब पढ़ेगी तो अपने पैरों पर खड़ी होगी, एक लड़की जब पढ़ेगी तो खुद मुख्तार बनेगी, एक समझदार माँ बनेगी, सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि सारे घराने की जिंदगी बदलेगी, आने वाली नस्लें संवारेगी। एक लड़की जब पढ़ेगी तो मुल्क को मजबूत बनाएगी। पाकिस्तान का आईन और कानून हर लड़की और लड़के को मुफ्त तालीम का हक फराहम करता है। लड़की को पढ़ाएंगे तभी तो आगे जाएंगे। वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान।
2: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
3: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदान जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में कभी NGO वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
2: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
4: facebook.com/FM247365

टैक्स पे करना अब हुआ आसान। अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर। आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैज कैश है ना।

0: इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
0: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैं रहेगी आगे बस।
0: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विद योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
2: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैस कैश।
3: लाइक अस ऑन facebook.com/fm247365
4: Back to back, back to back. Only music, no RJ talk.
5: Only music, no RJ talk.
4: This is FM.

0: It's 9:45 PM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix
1: laga aur bhul ja. अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैस कैश।
2: 23 से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखादही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं, तो बराह करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सरदर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो, तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा ना होने दें। पानी की टंकियों को ढांप कर रखें, गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें, लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहने, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
4: क्या आप जानते हैं कि आपका मोबाइल बैलेंस गैर इरादी तौर पर भी खत्म हो सकता है? ये अक्सर इस वक्त होता है जब आपका डेटा पैक खत्म हो जाता है, लेकिन इंटरनेट पे एज यू गो रेट्स पर चलता रहता है, जिससे बैलेंस तेजी से कम हो सकता है। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से सार्फिन को आगाह किया जाता है कि ऐसे गैर जरूरी चार्जेस से मुहतात रहें। मोबाइल फोन ऑपरेटरों की जानिब से इस मसले के हल के लिए एक मुफीद और मुफ्त सर्विस मुतारिफ कराई गई है। इस सर्विस के जरिए आपका डेटा पैक खत्म होते ही इंटरनेट का इस्तेमाल खुदकार तौर पर बंद हो जाएगा, ताकि आपका कीमती बैलेंस महफूज रहे। सर्विस कॉल करने के लिए दर्ज सेल कोड्स डायल करें। जैज सार्फिन के लिए *275#, जोंग सार्फिन के लिए *4004#, यूफोन सार्फिन के लिए *6611# और टेलीनॉर सार्फिन के लिए *342#। अपना बैलेंस महफूज रखें और गैर जरूरी चार्जेस से बचें। डिजिटल दुनिया में महफूज कदम पीजिए।
5: ये मुफादे आमा का पैगाम आप तक पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है।
6: facebook.com/fm247365

0: FM 100's time check. It's 10 PM.
1: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय

0: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैस कैश।
1: क्या कम उम्र बच्चियों से मुशक्कत लेना सरासर ज्यादती नहीं? क्या ये उम्र उनके काम करने की है या पढ़ने और हंसने खेलने की? उन पर काम का बोझ ना डाले, उनसे उनका बचपन ना छीन। पाकिस्तान का आईन और कानून हर बच्चे को जहनी, जिस्मानी और तालीमी हक फराहम करता है। बच्चों से मुशक्कत लेना एक काबिल सजा जुर्म है। आइए बच्चों से मुशक्कत से इनकार करें। वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान।
2: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
3: FM 247365

टैक्स पे करना अब हुआ आसान। अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर। आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैज कैश है ना।

0: इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
0: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैल रहेगी आगे बस।
0: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
2: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैस कैश।
3: FM 24/7 365.

0: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैस कैश।
1: पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कूट इसका नौजवान तबका है। पाकिस्तान की 60% आबादी 18 से 35 साल की उम्र के अफराद पर मुश्तमिल है, जो एक मुनफरद आबादियाती सरमाया है। नौजवान हमारी मईशत की धड़कन और हमारे मुस्तकबिल के मेहमान हैं। अहम उनके खिलाफ एक खामोश जंग जारी है और वो है मुनशियात का बेहतर इस्तेमाल। मुनशियात खरोश माफिया अच्छी तरह से जानती है कि कहां वार है। हमारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियां उनका हदफ है, जहां वो नौजवान जहनों को खतरनाक नशा आवर अशिया से गुमराह कर रहे हैं। यही वो मकाम है जहां इंसदाद मुनशियात फोर्स के एन वाजे मकसद और मजबूत इरादे के साथ मैदान

0: कहर शनासाई का दावेदार तो है, लेकिन कौन हमारा अपना है? वक्त मिला तो सोचेंगे। और हमने उसको लिखा था कुछ मिलने की तदबीर करो, हमने उसको लिखा था कुछ मिलने की तदबीर करो, उसने लिख कर भेजा है वक्त मिला तो सोचेंगे। और मौसम खुशबू बादे सबा चांद शफक और तारों में, मौसम खुशबू बादे सबा चांद शफक और तारों में, कौन तुम्हारे जैसा है वक्त मिला तो सोचेंगे। प्रिया तुम अपने दिल की मानो या फिर दुनिया वालों की, या तो अपने दिल की मानो या फिर दुनिया वालों की, मशवरा उसका अच्छा है वक्त मिला तो सोचेंगे। क्यों तू अच्छा लगता है वक्त मिला तो सोचेंगे, वक्त मिला तो सोचेंगे, वक्त मिला तो सोचेंगे।
1: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदाने जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात है, और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
2: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।

तेरे जान तो बाद नहीं मैं दिता तेरा साथ तेनु दिन दिते रात देती इन्हीं अपनी जान जिनी किसी नु कदी नहीं दिती पर हो ही फिर आखी च मेरे ना जेड़ी शायद मैं भी

साथ दिल के चले, दिल को नहीं रोका हमने, जो न अपना था उसे टूट के चाहा हमने। एक धोखे में कटी उम्र हमारी सारी, क्या बताएं किसे पाया किसे खोया हमने।